0: का चेला, किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला।
1: ओ महाराज।
0: Yes.
1: योगी।
0: That's right.
1: Welcome.
0: Thank you.
1: Welcome.